0: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
1: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
0: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
1: जो तुम चाहो,
0: डाउनलोड द ऐप नाउ।
2: जो अपनी नींद भूलकर हमें सुलाती रही, जो अपनी ख्वाहिशें भूलकर हमारे ख्वाब पूरे करती रही, इस मदर्स डे उनसे कहो थैंक यू मॉम, हैप्पी मदर्स डे।

0: listening live through the website 24/7.
1: This program was brought to you by
2: Pepak hai to Pakistaniyat hai.
1: And Mospel karega ghanto fight. Mospel, machhar aap se dur rehne par majboor. And
3: apni remittance 19 February se 25 May ke darmiyan Bank Al Habib se vasool kare aur har mahine lucky draw mein shamil ho jaye.
4: Marka hai haq, ye wo dastaan hai jahan awaaz bani taqat aur jazba bana pehchan. Pakistan zindabad.
5: पाक फौज जिंदाबाद जिंदाबाद.
6: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉस्पेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट. मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर.
7: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं. शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान 75 साल से काबिले एतमाद.
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: पेपक है तो पाकिस्तानियत है.
4: एंड
3: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए.
6: एंड मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट. मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर.
1: एंड
8: AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम.
4: जिसने चलना सिखाया, जिसने गिरने ना दिया, माओ के आलमी दिन उनसे कहो माँ शुक्रिया. हैप्पी मदर्स डे.

0: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
1: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
0: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक,
1: जो तुम चाहो।
0: डाउनलोड दी ऐप नाउ।
2: मुसलसल तहकीक और यकसा मयार के साथ बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात की फरहमी, 160 साल से दुनिया भर में शिफा की एक शानदार रिवायत। शोवे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो, 75 साल से पाकिस्तान में काबिले एतमाद।
3: She never asked for a day off, never asked for a thank you, never asked for anything at all. On this Mother's Day, tell her, thank you mom. Happy Mother's Day.

0: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
1: ये सब गलत फहमियाँ हैं। हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
2: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
1: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
3: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
4: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
5: फॉर द स्लीपलेस नाइट्स, फॉर द एंडलेस लव, फॉर एवरीथिंग शी नेवर आस्क्ड बैक, दिस मदर्स डे डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू मॉम। A happy Mother's Day.

0: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
1: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
0: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
1: जो तुम चाहो,
0: डाउनलोड द ऐप नाउ।
2: हाई फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। वी ऑल ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस बट ड्रग्स are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
3: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya. Jisne chalna sikhaya, jisne girne na diya. इस मदर्स डे उनसे कहो थैंक यू मॉम, हैप्पी मदर्स डे।

0: This is a produced radio promo.
1: With special effects devised to get your attention.
0: This is where I can tell you what you can win.
1: I'll say it again with effect.
0: What you can win.
1: Now I speed up to emphasize how important it is. A massive big prize, followed by another big prize, and an opportunity to win the overall prize.
0: The overall prize.
1: The overall prize allows you and somebody you know to do something amazing.
0: Thanks to this radio station.
2: This radio station.
0: Big bang to finish the whole thing off.
3: 100 FM. FM.
4: This program was brought to you by...
5: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
6: एंड मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
7: एंड रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
8: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ।
4: एंड
9: तो भाई साहब क्या समझे।
10: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
11: मार्का ए हक, जब कौम बने एक आवाज।
12: पाक फौज जिंदाबाद।
13: 24 सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अड्डा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। 24 सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।
14: जो अपनी नींद भूलकर हमें सुलाती रही, जो अपनी ख्वाहिशें भूलकर हमारे ख्वाब पूरे करती रही, इस मदर्स डे उनसे कहो थैंक यू मॉम। Happy Mother's Day.

0: जा।
1: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।
2: जिसने चलना सिखाया, जिसने गिरने ना दिया, माओ के आलमी दिन उनसे कहो माँ शुक्रिया। Happy Mother's Day.

0: बिजलियां हैं बिजलियां, हाय रे मेरी सेल्फियां.
1: There's only one station that keeps you moving all day long.
2: FM 100. 100.
3: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
5: Kisi bhi insaan ke liye sabse ahem hoti hai uski sehat.
6: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
5: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
7: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
6: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
5: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
7: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
6: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
7: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
5: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
6: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
5: आइए वेट से आगे का सोचें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। मार्का हक, ये वो दास्तान है जहां आवाज बनी ताकत और जज्बा बना पहचान। पाकिस्तान जिंदाबाद।
9: पाकिस्तान जिंदाबाद।
10: पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद।
11: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉस्पेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट।

0: हॉस्पिटल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
1: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बराए राब्ता 0333-555-0011।
2: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए शोआबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। शोआबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।
3: शी नेवर आस्क्ड फॉर अ डे ऑफ, नेवर आस्क्ड फॉर अ थैंक यू, नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग एट ऑल। ऑन दिस मदर्स डे, Tell her, thank you, mom. Happy Mother's Day.

0: पेंशन कई को लेता जानी, सब मिलेगा सब मिलेगा।
1: कर बे खड़ी है किस्मत लेके नोट सारे।

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: For the sleepless nights, for the endless love, for everything she never asked back. This Mother's Day, don't forget to say, thank you, Mom. A happy Mother's Day.

0: tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum.
1: जिंदगी और मौत का सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करता है, क्या किस्मत की तमाम ठोकरें सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हैं? क्या किस्मत के तमाम चक्रों की गर्दिश खत्म कर देना ही जौहर-ए-मर्दानगी है?

0: सबसे प्यारा FM 100 हमारा।
1: भाइयों घबराना नहीं, यहाँ नहीं पढ़ सकती कोई रे, खत्म हो गया सबका वेट, क्योंकि अब आ

0: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
1: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
2: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं

0: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
1: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
2: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
1: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
2: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाइए,
0: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: पाक फौज जिंदाबाद।
5: मार्का हक, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अहद की तकमील है। एक ऐसा सफर जहां हर आजमाइश ने कौम का हौसला बढ़ाया और हर चैलेंज ने कौम को मजबूत बनाया। जब अवाम का यकीन और मुहाफिजों की कुर्बानी साथ हो तो तारीख बदलती है और हक सर बुलंद होता है। मार्का हक, एक साल जद्दोजहद का, एक साल फतह का, एक साल इत्तेहाद का।
6: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
7: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
8: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
7: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
8: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
9: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
10: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
11: मतवासन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
12: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333-555-0011।
5: फॉर द स्लीपलेस नाइट्स, फॉर द एंडलेस लव, फॉर एवरीथिंग शी नेवर आस्क्ड बैक, दिस मदर्स डे डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू मॉम। अ हैप्पी मदर्स डे।

0: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
1: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
0: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
1: जो तुम चाहो,
0: डाउनलोड द ऐप नाउ।
2: जो अपनी नींद भूलकर हमें सुलाती रही, जो अपनी ख्वाहिशें भूलकर हमारे ख्वाब पूरे करती रही, इस मदर्स डे उनसे कहो थैंक यू मॉम, हैप्पी मदर्स डे।

भी जाए कुर्बान हम सौ दफा जानम हिसाब तो कभी किया ही नहीं, मेरा खुदा गवाह उसने मेरे गुनाहों का अब तक हिसाब लिया ही नहीं। तोहफे तहाइफ देते ये बज़ाहिर पर दिल तो किसी ने दिया ही नहीं, मेरी तेरे बगैर जो जिंदगी गुजरी वो काटी है उसे जिया तो नहीं। किया ही नहीं मैंने तेरा ना होना कबूल, कितने ही गिले और कितने ही शिकवे हम होंगे और कितने मजबूर। मैंने आईने साफ किए जाने मंजर के चेहरे पे थी मेरी धूल, और ये दोनों हाथ खाली आज भी मुझे कुछ हुआ ना हासिल।

0: आपा,
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
0: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0001।
6: जो अपनी नींद भूलकर हमें सुलाती रही, जो अपनी ख्वाहिशें भूलकर हमारे ख्वाब पूरे करती रही, इस मदर्स डे उनसे कहो थैंक यू मॉम, हैप्पी मदर्स डे।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100। इरशाद बारी ताला है। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। सूरह अनफाल।
2: FM 100।

0: AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।

0: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून। तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान, 75 साल से काबिले एतमाद।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
5: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए।
0: एंड मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
6: एंड रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
7: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ।
8: एंड तो भाई साहब क्या समझे।
9: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
10: एंड AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
11: She never asked for a day off, never asked for a thank you, never asked for anything at all. On this Mother's Day, tell her, thank you, Mom. Happy Mother's Day.

0: जीते 20,000 रूपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रूपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
1: मार्का हक, जब कौम बने एक आवाज। पाक फौज जिंदाबाद।
2: किसने कहा था पैसे बचा।

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
1: पेपाक है तो पाकिस्तानियत है एंड मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
0: एंड
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए।
0: It's 6 PM. This time check is brought to you by
3: Rakmi Islamic Digital Bank. यहाँ मिलेंगे real solutions, क्योंकि Rakmi है 100% Islamic.
4: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT technology food expiry notification के साथ साथ आपको दे mobile app से complete control. No frost, no worries.

0: के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
2: पाक फौज जिंदाबाद।
3: मार्का हक, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अहद की तकमील है। एक ऐसा सफर जहां हर आजमाइश ने कौम का हौसला बढ़ाया और हर चैलेंज ने कौम को मजबूत बनाया। जब अवाम का यकीन और मुहाफिजों की कुर्बानी साथ हो तो तारीख बदलती है और हक सर बुलंद होता है। मार्का हक, एक साल जद्दोजहद का, एक साल फतह का, एक साल इत्तेहाद का।
4: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
5: लम्हे तारीख बन जाते हैं। मार्का हक एक ऐसा लम्हा जब पाकिस्तान ने साबित किया कि वो अपनी
6: ट्वीन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
7: 24 सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती है 100% ऑर्गेनिक अड्डा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। 24 सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।
8: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
9: पेपाक है तो पाकिस्तानियत है।
10: एंड अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए।
11: एंड मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
3: जिसने चलना सिखाया, जिसने गिरने ना दिया, माओ के आलमी दिन उनसे कहो माँ शुक्रिया। हैप्पी मदर्स डे।

0: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
1: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
0: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
1: जो तुम चाहो,
0: डाउनलोड दी ऐप नाउ।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।
4: She never asked for a day off, never asked for a thank you, never asked for anything at all. On this Mother's Day, tell her, thank you, Mom. Happy Mother's Day.

0: कि दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम से कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।

0: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून। तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात।

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Haier No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
2: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम दो बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।

0: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
1: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
0: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
1: जो तुम चाहो,
0: डाउनलोड द ऐप नाउ।
2: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। वी ऑल ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस बट ड्रग्स are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
3: Ye paigham hukumat-e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: जिसने चलना सिखाया, जिसने गिरने ना दिया, इस मदर्स डे उनसे कहो थैंक यू मॉम, हैप्पी मदर्स डे।
6: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
5: अजान मगरिब पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
7: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लाहौर और उसके मजाफात में नमाज मगरिब का वक्त हो गया है।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100।
2: इरशादे बारी ताला है, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेक कामों का अमर करने वाले और बुरी बातों से मना करने वाले, अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले, यही मोमिन लोग हैं। और ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों को बहिश्त की खुशखबरी सुना दो। सूरह तौबा।
1: FM 100।

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
1: एंड अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: एंड रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
3: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ।
1: एंड तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
2: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस, क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
5: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: मार्का हक, एक साल सच के साथ, एक साल आवाम की आवाज के साथ। मार्का हक, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अजम, इत्तेहाद और कुर्बानी की दास्तान है। जब कौम और मुहाफिज एक सफ में खड़े हों तो हक की आवाज कभी दब नहीं सकती। जहां हर कदम हक की जीत और वतन की मोहब्बत का आईनेदार बना, ये वो सफर है जिसमें अवाम का जज्बा और मुहाफिजों की हिम्मत मिलकर बनी एक नाकाबले शिकस्त ताकत। पाकिस्तान जिंदाबाद,
2: पाक फौज जिंदाबाद।
3: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान, 75 साल से काबिले एतमाद।
1: जो अपनी नींद भूलकर हमें सुलाती रही, जो अपनी ख्वाहिशें भूलकर हमारे ख्वाब पूरे करती रही, इस मदर्स डे उनसे कहो थैंक यू मॉम। Happy Mother's Day.

0: जाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
2: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
1: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
3: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
2: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
1: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
3: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
2: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
3: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
1: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
2: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
1: आइए वेट से आगे का सोचें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। मार्का हक, जब कौम बने एक आवाज। पाक फौज जिंदाबाद।
5: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉस्पेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।

0: पाक फौज जिंदाबाद।
1: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
2: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राबता 0333-555-0011।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
5: शी नेवर आस्क फॉर अ डे ऑफ, नेवर आस्क फॉर अ थैंक यू, नेवर आस्क फॉर एनीथिंग एट ऑल। ऑन दिस मदर्स डे टेल हर थैंक यू मॉम, हैप्पी मदर्स डे।
6: इंसानी हकूक की संगीन पामालियां पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर अपने इन भाइयों की भरपूर सफारती, सियासी और इखलाकी हमायत की है, और इस वक्त तक ये हमायत जारी रखेगी जब तक फलस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम अमन के साथ आजाद फसाओं में सुख का सांस नहीं ले लेते। अल्लाह ताला ने चाहा तो वो दिन जरूर और जल्द आएगा। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ जारी ऑपरेशन में हमारी मसल्ला फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर अफसर और जवान दिफाए वतन के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी बेमिसाल पेशावराना महारत और बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला करके उसको हमेशा के लिए दफन कर देगी। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता कि मौसम इस वक्त बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आज के दिन मैं कौम के बेटों और बेटियों को मुखातब करते हुए ये गुजारिश करूंगा कि आपने नौजवानों को उनकी पजीराई करनी है। आप नौजवान ही हमारा सबसे बड़ा कीमती असासा है। आपके अंदर मौजूद वलवला, सलाहियत और जोश पाकिस्तान को औज कमाल तक ले जाने के लिए काफी है। हमें आप जैसे कीमती असासे को बुरुएकार लाते हुए इल्म, हुनर और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तेजी से आगे बढ़ना होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाल्लाह जदीद तालीम, हुनरमंदी और रोजगार के मौके आपके कदमों में निशावर करेंगे। आए आज के दिन हम ये अहद करें कि अपने शहदा की अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। इतिहाद मार के हक के जज्बे और अंथक मेहनत से पाकिस्तान को अकवाम आलम में उसका शान शान मकाम दिलवाएंगे। कि इकबाल ने यही कहा था कि रब्त कायम फर्द मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, रब्त कायम फर्द मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।
7: बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। ख्वातीन हजरात, आज पाकिस्तान एक मजबूत, बावकार और सरबलंद कौम है।

0: भूल जा।
1: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
2: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
1: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
2: जो तुम चाहो,
1: डाउनलोड दी ऐप नाउ।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: For the sleepless nights, for the endless love, for everything she never asked back. This Mother's Day, don't forget to say, thank you mom. A happy Mother's Day.
5: मौसीकार शुजा हैदर इस वक्त स्टेज पे आपके सामने मौजूद हैं, जो इस नगमे के लीड वोकलिस्ट हैं और इसको कंपोज भी इन्होंने ही किया है।
6: इनका साथ दे रहे हैं पाकिस्तान के उभरते हुए सितारे तरब नफीस, आर्यान नवीद, नबील अब्बास और माहम ताहिर। खातीनों हजरात, पेश खदमत है तू याद रखी।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: Rakmi Islamic Digital Bank. Yahan milenge real solutions. Kyunki Rakmi hai 100% Islamic.
0: Markae Haq. Ye wo dastaan hai jahan awaaz bani taqat aur jazba bana pehchan. Pakistan Zindabad.
2: Pakistan Zindabad.
3: Pak Fauj Zindabad.
4: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
0: जिसने चलना सिखाया, जिसने गिरने ना दिया, इस मदर्स डे उनसे कहो थैंक यू मॉम, हैप्पी मदर्स डे।

0: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
1: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
0: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
1: जो तुम चाहो,
0: डाउनलोड दी ऐप नाउ।
2: जो अपनी नींद भूलकर हमें सुलाती रही, जो अपनी ख्वाहिशें भूलकर हमारे ख्वाब पूरे करती रही, इस मदर्स डे उनसे कहो थैंक यू मॉम, हैप्पी मदर्स डे। FM 100
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
2: अजान इशा पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लाहौर और उसके मजाफात में नमाज इशा का वक्त हो गया है।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100।
2: इरशाद बारी ताला है और आसमानों और जमीन की छुपी चीजों का इल्म अल्लाह ही को है और तमाम मामलात उसी की तरफ रुजू किए जाएंगे, तो उसी की इबादत करो और उसी पर भरोसा रखो और जो कुछ तुम लोग कर रहे हो तुम्हारा परवरदिगार उससे बेखबर नहीं। सूरह हूद।
1: FM 100।

0: It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
3: मार्का हक, एक साल सच के साथ, एक साल आवाम की आवाज के साथ। मार्का हक, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अजम, इत्तेहाद और कुर्बानी की दास्तान है। जब कौम और मुहाफिज एक सफ में खड़े हों, तो हक की आवाज कभी दब नहीं सकती। जहां हर कदम हक की जीत और वतन की मोहब्बत का आईनेदार बना, ये वो सफर है जिसमें अवाम का जज्बा और मुहाफिजों की हिम्मत मिलकर बनी एक नाकाबले शिकस्त ताकत। पाकिस्तान जिंदाबाद,
4: पाक फौज जिंदाबाद।
5: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
6: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
5: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
7: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
8: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
7: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
9: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
10: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333-555-0001।
2: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
3: जिसने चलना सिखाया, जिसने गिरने ना दिया, माओ के आलमी दिन उनसे कहो माँ शुक्रिया। हैप्पी मदर्स डे।

मैं तुमसे तुम्हारे ख्वाब नहीं छीन सकता। I know what you want, मगर मैं फौज नहीं छोड़ सकता। इसलिए कि फौज मेरे खून में शामिल है। अगर फौज छोड़ दूंगा तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता।

0: एजीएस ट्यूबलाइट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। एजीएस ट्यूबलाइट बैटरी, दिल को है आराम।
1: पाक फौज जिंदाबाद।
2: मार्का हक, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अहद की तकमील है। एक ऐसा सफर जहां हर आजमाइश ने कौम का हौसला बढ़ाया और हर चैलेंज ने कौम को मजबूत बनाया। जब अवाम का यकीन और मुहाफिजों की कुर्बानी साथ हो तो तारीख बदलती है और हक सर बुलंद होता है। मार्का हक, एक साल जद्दोजहद का, एक साल फतह का, एक साल इत्तेहाद का।
3: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
4: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
5: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
4: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
6: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
7: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाए।
6: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
8: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
9: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011।
2: जो अपनी नींद भूलकर हमें सुलाती रही, जो अपनी ख्वाहिशें भूलकर हमारे ख्वाब पूरे करती रही, इस मदर्स डे उनसे कहो थैंक यू मॉम, हैप्पी मदर्स डे।

0: विवाद स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011।
1: जिसने चलना सिखाया, जिसने गिरने ना दिया, माओ के आलमी दिन उनसे कहो माँ शुक्रिया। हैप्पी मदर्स डे।

टेंशन कई को लेता जानी सब मिलेगा सब मिलेगा। बुकर पे खड़ी है किस्मत लेके नोट सारे लंच।

0: I love it.
1: जिंदगी और मौत का सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करता है। क्या किस्मत की तमाम ठोकरें सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हैं? क्या किस्मत के तमाम चक्रों की गर्दिश खत्म कर देना ही जौहर मर्दानगी है?

सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बराए रब्ता 0333 555 0011।

इंसान को हैरानी में, क्योंकि सपने काम बिगड़ जाते हैं नादानी में, तो डूब सकता नहीं तूफान की वो तुगी।